0: This is Talk 100.3.
1: Kabhi mere dil mein khayal aata hai ki zindagi teri zulfon ki narm chhaon mein guzarne paati to shadab ho bhi sakti thi. Ye ranjo gham ki siyahi jo dil pe chhai hai teri nazar ki shuaon mein kho bhi sakti thi. Magar ye ho na saka aur ab ye alam hai कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं. गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं. न कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुराग. भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी. इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर. मैं जानता हूं मेरी हमनफस मगर यूं ही

0: This is Talk 100.3.
1: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा, चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है।

0: across the Emirates on FM 100.3 and online across the world. We are the home of news, sports and conversation. This is Talk 100.3. This is Talk 100.3.
1: Well, joining us in conversation is Vinay Chaudhary, our finance expert, who's here to talk to us about all things, you know, whether it's the rise of gold and how we can invest wisely. Good morning, Vinay, and welcome to the show.
2: Good morning, Mural and Sobhya. Pleasure to talk to both of you.
3: Same here, Vinay. So, ye gold kab tak aise chauke chhakke lagata rahega, Vinay?
2: There is a basically a difference that's happened in the ecosystem. जब रशिया का वॉर हुआ था, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था,
3: सही,
2: तो 260 बिलियन डॉलर्स रशिया का यूएस ने जो यूएस डॉलर में डिपॉजिटेड था उसको सीज कर दिया था. तो अब हर कंट्री को, काफी कंट्रीज को ये डर लगने लग गया कि कल को अगर हमारा पंगा हो गया यूएस के साथ में या यूरोप के साथ में, तो हमारा जो भी पैसा डॉलर में या यूरो में रखा हुआ है तो वो सीज हो सकता है. तो हमें पूरा पैसा डॉलर या यूरो में नहीं रख के डाइवर्सिफाई करना है. दिस इज फ्रॉम अ सेंट्रल बैंक पॉइंट ऑफ व्यू,
1: करेक्ट.
2: सो अब सेंट्रल बैंक्स बाई कर रहे हैं. जब आपके पास में डिमांड सप्लाई में एक तरफ डिमांड ज्यादा आने लग जाती है तो प्राइस ऊपर जाती है.
3: सही.
2: तो ये प्राइस मेरे ख्याल से तो और ऊपर जाती जाएगी.
1: राइट. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू येट अनदर क्वेश्चन विनय, बिकॉज गिवन द करंट सिचुएशन, यू नो, वेर इट इज द यूएई दिरहम एंड द इंडियन रुपी, नाउ द रेट इज अबाउट 24.62. दिस इज द रुपी इज एक्सपेक्टेड टू इवन वीकन फर्दर. इज दैट ट्रू मिड फेब्रुअरी? बिकॉज आई वॉज रीडिंग अ कपल ऑफ रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू अ फ्यू एनालिस्ट.
2: सो मेरा पर्सनल व्यू है कि भी ये ग्रेजुअल डिवेल्यूशन होता रहेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स यहाँ पे, और बांग्लादेश के इकोनॉमीज इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो डिवेल्यूशन धीरे धीरे होता रहेगा. क्या रेट पे डिवेल्यूशन होगा इज एनीबडीज गेस.
3: ऑफकोर्स. लेकिन विनय, तो सवाल वही उठता है कि क्या और इंतजार करें या वक्त से फायदा उठाएं?
2: सो मेरा तो मानना यह है कि अगर आपके पास में कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है अपने देश में, एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, बिकॉज एंड ऑफ द डे क्वेश्चन ये है कि भी आप रिटर्न कितना कमा लोगे. अब यहाँ पे आपको 4% का रिटर्न मिल जाता है, और अगर आप अपने देश में, अगर आप लॉन्ग टर्म डिवेल्यूशन रेट अगर देखो, मैं जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का बोल सकता हूँ, एवरेज अबाउट 4.5 से 5% डिवेल्यूशन है.
3: सही.
2: तो अगर मैं डॉलर दिरहम में 4% रख रहा हूँ और 4.5% का डिवेल्यूशन लॉन्ग टर्म का मानूं, अगर मैं 8.5 से ज्यादा इंडिया में कमा सकता हूँ,
3: करेक्ट,
2: तो मुझे इंडिया भेजना चाहिए. अगर नहीं तो फिर आई शुड ट्राई एंड इन्वेस्ट सम मनी हियर.
1: विनय जी, इफ यू कैन टॉक टू अस अ लिटिल बिट अबाउट गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, रेमिटेंसेस के बारे में, यू नो, दिस इज समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड, बट गोल्ड इन्वेस्टमेंट, वी हैव सीन द ग्राफ पॉप इन एंड पॉप डाउन, बट वी हैव नो आइडिया. ऑल्दो एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट इट इज टाउटेड टू गो एट एन ऑल टाइम हाई एट द एंड ऑफ 2026, बट इट्स ऑल्सो टाउटेड टू गो अ लिटिल बिट हायर दिस मंथ. इज इट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, एंड वॉट वुड यू सजेस्ट?
2: I would say there is an upward trend in the gold in the last few years since 2022, और वो upward trend trajectory चलती रहेगी.
3: सही.
2: So question is of timing, what's the right time, and that's anybody's guess. But अगर आपको पता है कि भी gold की rate ऊपर जानी है, then any time is a good time to invest.
1: So would you suggest remitting money back home right now because of the current, you know, the exchange value? Or would you say hold on to that money and probably reinvest it over here? That is going to reap you much more benefits. How are you coining this situation?
2: देखो, अगर आप यहाँ पे रहते हो और आप अगर, for example, gold में invest करते हो अपने देश में, संभालने वाला कौन है? Precious है. आप घर में रखोगे, locker में रखोगे, जबकि आप यहाँ रह रहे हो. तो जहां आप रह रहे हो वहां पे आप ज्यादा अच्छे से संभाल सकते हो. तो माय एडवाइस वुड बी, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, और दूसरा चीज प्रॉब्ली एटलीस्ट आई कैन से फॉर इंडिया, कि बाइंग गोल्ड इज मच इजियर ओवर हियर देन इन इंडिया. अगर एक एक्स अमाउंट से ज्यादा खरीदते हो तो वहां पे आपको अपने डिटेल्स पैन कार्ड वगैरह देने पड़ते हैं, कल को सवाल आ सकता है, और यहाँ पे मच इजियर टू डू ऑल दैट.
3: एंड विनय ये भी बताइएगा कि जाहिर है तो एक फिजिकल गोल्ड है आपकी बुलियन कॉइन्स ज्वेलरी जो भी आप कहिए, फिर दूसरे ऑप्शंस भी हैं, आप क्या प्रेफर करते हैं?
2: अगेन मेरा एग्जांपल थोड़ा गलत होगा बिकॉज माय वाइफ इज अ सीएफटी एक्सपर्ट, सीएफटी में कर लेती है, बट जनरली अगर आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन का कंफर्टेबिलिटी नहीं है तो फिजिकल गोल्ड लेना ज्यादा ठीक है.
1: ठीक है. और कुछ लोग ये भी कहते हैं, काफी एनालिस्ट ये कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड आप दुबई रियल एस्टेट जो है वो वहां पे आपका ध्यान जाना चाहिए बिकॉज दैट इज रेडी टू ऑफर यू 6-10% इन रेंटल ईल्ड. सो अगेन एज एन इंडिविजुअल आई एम फीलिंग टोन अपार्ट, शुड आई गो यू नो इन्वेस्टिंग इन टू दैट अमाउंट इन टू गोल्ड और शुड आई गो मे बी अ लिटिल बिट मोर एंड ऑल आउट इन टू द दुबई रेंटल मार्केट दैट इज रेडी टू सी दैट इंक्रीज फ्रॉम अ 6-10% rental yield, which is a lot more.
2: So, अगर आपके पास में property खरीदने जितना पैसा है, तो आप better आप थोड़ा सा diversify करें, थोड़ा gold में डालें, एक bigger chunk property में डालें, because property का हमेशा ticket size बड़ा होता है. वैसे भी economic point of view से गोल्ड इज अ डेड इन्वेस्टमेंट, वो इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं करता है, आपके पर्सनल वेल्थ के लिए शायद बढ़ जाए बट इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं करता है. जबकि रियल एस्टेट ऑल्सो ट्रिगर्स एन इकोनॉमिक मूवमेंट, लोगों को रहने के लिए घर मिलते हैं, आप रेंट आउट करेंगे, तो इट्स ऑलवेज गुड टू फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अमाउंट गोल्ड में डालें बट बिगर अमाउंट ऐसे एक्टिविटी में डालें जहां पे इकोनॉमिक मोमेंटम ज्यादा आए.
3: विनय क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है व्हेन इट कम्स टू गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स?
2: So gold mining stocks will also be doing good.
3: अच्छा.
2: Gold जैसे जैसे gold की price ऊपर जाएगी, उनका cost of mining तो same है, price ऊपर जाने के कारण उनकी cost तो बढ़ती नहीं है. और but problem ये है कि भी gold mining stocks already काफी high multiples पे चल रहे हैं.
3: Okay.
2: तो identify that opportunity, तो आपकी relatively risk factor बढ़ जाती है वहाँ पे.
3: सही.
1: राइट. अब हम जब गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, वी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन रेट राइजिंग, इट इज अ टैक्स फ्री कैपिटल गेन, राइट? बट नॉट वेरी मेनी पीपल अंडरस्टैंड वाई द प्राइजेज यू नो सी सच ह्यूज फ्लक्चुएशंस. विनय जी, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू एक्सप्लेन दिस अ लिटिल मोर टू अस एज टू वाई द फ्लक्चुएशन हैपन्स एंड हाउ कैन वी मॉनिटर इट क्वाइट क्लोजली?
2: सो बेसिकली स्पेकुलेटिव ट्रेड ज्यादा हो रहा है. सो यू हैव ऑन वन साइड कंज्यूमर डिमांड जो मेनली साउथ एशिया में आता है, और okay. और दूसरा चीज फिजिकल डिमांड आ रही है सेंट्रल बैंक से, मल्टीपल सेंट्रल बैंक्स. देयर इज आल्सो वन क्रिप्टो करेंसी गाय हु हैज बीन बाइंग बिग क्वांटिटी, इश्यूअर ऑफ क्रिप्टो करेंसी हैज बीन बाइंग बिग क्वांटिटी ऑफ गोल्ड. सो और ये दोनों के अलावा फिजिकल डिमांड, सेंट्रल बैंक डिमांड के अलावा स्पेकुलेटिव डिमांड है. नाउ आपके फ्रेंड सर्कल्स में सब जगह पे ये बात आ रही है गोल्ड ऊपर जा रहा है और गोल्ड और ऊपर जाएगा, सो एवरीबडी इज टेकिंग अ पोजीशन. सो आपका स्पेकुलेटिव पोजीशंस बहुत बढ़ रहे हैं, और स्पेकुलेटिव पोजीशंस होते हैं तो बहुत लोग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं.
3: सही.
2: तो जैसे ही थोड़ा सा करेक्शन आता है तो एक मोमेंटम आ जाता है करेक्शन का और सडनली ड्रॉप हो जाता है. जैसे अभी आपने देखा पिछले एक वीक के अंदर
3: जी जी जी
2: बहुत गोल्ड की प्राइस गिर गई थी,
3: राइट?
2: बट इनहेरेंट डिमांड है मार्केट में है फिजिकल गोल्ड के लिए बिकॉज सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग बिग क्वांटिटी.
3: ऑलराइट.
2: तो डिमांड तो प्राइस लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करना is very difficult for anybody.
3: Now, Vinay ji, agar thoda sa hum, you know, sidetrack ho jayen for those people who are not at this point in time able to invest in gold, to unke liye dusri precious metal agar aap thoda sa recommend karein ya guide karein us side par.
2: So, aap refer kar rahe hain silver ko, shayad. Aur silver ke andar aapka sudden demand increase nahi hua hai. आफ्टर द इवेंट बहुत लोग एनालिसिस कर लेते हैं इसके कारण क्या होगा उसके कारण क्या होगा, बट अगर आप देखें फंडामेंटली सिल्वर का यूसेज होता है बैटरीज के अंदर और सोलार पैनल्स के अंदर और काफी इंडस्ट्रियल यूसेज है, बट कोई सिग्निफिकेंट जंप नहीं हुआ है सिल्वर के अंदर. सो मेरे जस्ट माई व्यू सिल्वर का इंक्रीज वॉज स्पेक्यूलेटिव. अब आप सोचें भी अगर आप एक किलो सिल्वर खरीदें तो आपको ठीक है आप घर में रख सकते हो, लेकिन अगर आप एक टन खरीद रहे हो तो आपको उसको स्टोरेज करना है, सिक्योरिटी इनकर करनी है, इंश्योरेंस इनकर करना है वर्सेस गोल्ड. तो आपका जो आउटले होता है वो सिग्निफिकेंटली हायर होता है गोल्ड में. वाई वुड एनीबडी बी बाइंग सिल्वर एंड होल्डिंग सिल्वर? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट लॉजिक. आपकी स्टोरेज कॉस्ट काफी हाई हो जाती है. सो सिल्वर वॉज प्राइमरीली स्पेक्युलेटिव, तो उसमें करेक्शन आना ही था.
1: Alright, Vinay ji, can you help us also understand the global and local equities? Now, for a long-term growth, experts are recommending allocating approximately, say, 80% of a beginner portfolio to your low-cost global index funds or your ETFs. Now, for local exposure, I'm sure there are a couple of platforms that provide complete access to top companies listed on ADX and DFM. Can you help us or probably take us through that process? If I want to get into the stock market, or if I want to start investing, where do I start from and how do I do it? What is the bare minimum amount I require?
2: So bare minimum amount, you can start with the smallest 2,000 or 5,000 dirhams, even 1,000 dirhams. Aapko DFM ya ADX mein register karna hai, ki investor ID lena hai, aur aapko identify karna hai ki kaun sa broker hai, jo uske charges kya hai, and there are multiple brokers in the marketplace. तो और बस उसके साथ अकाउंट खोले, पैसा डिपॉजिट करे और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे देते हैं वो लोग. सो इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आपको सबसे पहले तो आप ब्रोकर के पास जाएंगे, इवैल्यूएट करेंगे, वही आपके लिए सब कुछ प्रोसेस कर देगा.
1: Now,
2: और प्रॉब्ली दो तीन दिन के अंदर पूरा प्रोसेस.
1: बट हाउ डू यू डाइवर्सिफाई योर इनकम? इज देयर अ ग्रोथ चार्ट दैट यू हैव टू मॉनिटर? डू यू प्ले इन और डू यू गो इन फॉर अ लॉन्ग टर्म गेन, और डू यू काइंड ऑफ पुट योर मनी, सी इट इंक्रीज एंड देन पुल इट आउट? हाउ डज दैट वर्क? हाउ शुड यू यू नो बी एज एन इन्वेस्टर और एज एज समबडी हु इज इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक्स?
2: देयर आर टू थ्री डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज. एक तो डे ट्रेडर होते हैं जो मोमेंटम ट्रेडर होते हैं. अच्छा ये प्राइस बढ़ रहा है, पिछले आधे घंटे में बढ़ गया, मैं अब खरीदूंगा और आज के आज ही फिर से बेच दूंगा. दैट्स मोर स्पेक्युलेटिव. उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 100 सोनार की एक लोहार की. आपने थोड़ा थोड़ा पैसा कमाया और सडनली एक मूवमेंट ऐसा आ गया कि आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है.
3: सो कैलकुलेटिव रिस्क. विनय हमारे साथ, विनोद कुमार भास्कर हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप डायमंड इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या विचार हैं, क्या राय है आपकी?
2: सो जब से ये मैनमेड डायमंड आया है, सप्लाई की अबंडेंस हो गई है.
3: ओके,
2: अब कोई भी पर्सन अगर एक डायमंड ज्वेलरी पहन रहा है तो सामने वाला ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि ये नेचुरल है या मैनमेड है.
3: सही.
2: तो अब आप खाली ये गेस करोगे उसकी हैसियत के हिसाब से कि ये नेचुरल है या मैनमेड है. बट आप गेस नहीं कर सकते हो कि भी वो नेचुरल है या मैनमेड है. सो मेरा पर्सनल व्यू है कि भी जो सप्लाई कॉन्स्टेंट थी डायमंड में वो हट गई है, तो डिमांड सप्लाई में जब सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस पे असर पड़ता ही. और जैसे जैसे डिमांड, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जा रही है, डायमंड की प्राइस और कम होती जाएगी.
1: Agreed.
3: Now, विनय ये भी बताइए कि क्या आपने अपने आसपास ऑब्जर्व किया है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग नाउ? बिकॉज जेन जी वेरी डिफरेंट माइंडसेट, वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस, कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट स्कूल ऑफ इन्वेस्टर्स. व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड एंड आर दे नाउ यू नो रियलाइजिंग दैट गोल्ड इज अ गुड ऑप्शन, कीपिंग करंट सिचुएशंस इन माइंड?
2: Generally, I'm very impressed with the Gen Z mindset. They are all far more informed than what we were at our time, because information is far more easily available.
3: Well said.
2: They are far more financially aware and financial savvy on the products. आप जो stock market rally देख रहे हैं, particularly US में, a big chunk is basically the Gen Z investors who are in the workforce now and actually are aggressively investing into the share market as well.
3: Sahi.
2: So generally, they are doing quite well from फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. द ओनली कंसर्न इज दैट उन्होंने अभी तक लाइफ में कभी डाउन टर्न देखा नहीं है और डाउन टर्न ऑन एंड ऑफ आता रहता है. तो देयर विल बी एट सम पॉइंट
1: आईड लाइक सम प्रेजिंग फॉर द मिलेनियल्स एज वेल.
3: हम तो कुछ ज्यादा ही कैलकुलेटिव रिस्क लेने के आप.
1: बट इज इट अ गुड थिंग और इज इट नॉट अ गुड थिंग? बिकॉज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग आई हैव बीन टोल्ड दैट यू नीड टू टेक यू नो रिस्क्स टू एपेटाइट इज अ डिफरेंट स्टोरी एंड व्हाट आइडियली शुड बी अ परसेंटेज व्हेन यू टॉकिंग अबाउट रिस्क टू एपेटाइट.
2: सो देयर इज नो स्टैंडर्ड फार्मूला ओवर हियर.

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: This is Talk 100.3.
1: Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. Henna Speedy Hair Color, your quick fix solution for changing back the lost colors of your hair in just 7 minutes. Talk 100.3. You're listening to the best of Talk Sports and Business.
2: कहो कहा सुना और ऐसा सुना कि हमारे कान में से खून निकल के आ गया. I'm not kidding when I say that. Like, पता है क्या होता है ना कि we consume content. Everywhere we consume content these days. आप फोन उठाओ तो फोन पे content है, आप magazines check करोगे तो उसमें content है, newspaper में content है, videos हैं, WhatsApp groups हैं, हर जगह पे आप content consume करते हो. Obviously radio पे तो करते ही करते हो, TV पे करते ही करते हो, पर ये भी साथ में content अब आ चुके हैं. Now what happens is कि because some of the platforms are moderated, जैसे कि radio, ठीक है, radio पे कोई भी आके बात नहीं करना शुरू नहीं कर सकता, आपको टाइम लगता है. अभी कहीं कहीं पे होता है कि कोई भी बात करता है लेकिन हर जगह नहीं होता, ठीक है ना. तो वहां पर सारा मॉडरेशन होता है. द गवर्नमेंट ऑल्सो लुक्स इन टू इट. नाउ इफ आई से समथिंग रॉन्ग, ठीक है, द नेक्स्ट थिंग यू विल ओनली गेट टू नो इज दैट नील का भाई बैग पैक हो गया, नील निकल गया, है कि नहीं. होता है ना, होता है ना. यही चीज अगर आप इंस्टाग्राम पे कर लो, यूट्यूब पे कर लो, तो काफी सारी चीज ना कारपेट के अंदर डाल के चल जाती है. लेकिन अभी अभी ऐसा हुआ, कुछ दिनों पहले की बात है, कि रणवीर अलाहाबादिया एक जो कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, पॉडकास्टर हैं, एंड ही इंटरव्यूज लाइक द बिगेस्ट ऑफ द नेम्स, बिगेस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज, चाहे स्पोर्ट्स पीपल हों, चाहे एक्टर्स हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल गुरुज हों, सबसे बात करते हैं और बहुत बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट बनाते हैं. लेकिन इंडियाज गॉट लेटेंट करके एक शो है, उस शो में वो आए एंड देन ही सेड समथिंग विच वॉज एब्सोल्यूटली क्रास, क्रिंज. My words, okay? You can hold me accountable for using these terms because that's what I felt, my opinion, okay? अब उसके बाद ये हुआ है कि बहुत सारा बवाल हुआ and people have started talking about it and there are FIRs that have been launched against him and even the chief minister of Maharashtra said that he should be brought under judicial custody. So much has happened. Now this is my opinion, ke boss, this is not done. This kind of content should not come out. What are your thoughts? And to you know, to think about it, you know, you guys also called and some of you called and we spoke about it. But I thought we should speak to someone who creates content for a living. So I've got in touch with Nivedit. Nivedit joins in from India. Nivedit, how are you doing today?
3: I'm doing good. Neil, how are you doing?
2: Very well, Nivedit. You've been in the content creation journey for quite some time, Nivedit. What were your first thoughts when something like this came through, when you consumed that content? What was your first reaction?
3: Honestly, I've been creating content for 17 years now. So
2: wow.
3: This is way back before YouTube or Facebook, Instagram all became a trend. So when I see something like this, I feel as in I'm also responsible being an influencer myself. But if someone is trying to

0: You're listening to the best of Daybreak on Talk 100.3.
1: Well, joining us in conversation is Vinay Chaudhary, our finance expert, who's here to talk to us about all things, you know, whether it's the rise of gold and how we can invest wisely.
2: So, ye gold kab tak aise chauke chhakke lagata rahega, Vinay?
3: There is basically a difference that's happened in the ecosystem. Jab Russia ka war hua tha, Russia-Ukraine ka war hua tha.
2: Sahi.
3: To $260 billion Russia ka US ne जो यूएस डॉलर में डिपॉजिटेड था उसको सीज कर दिया था. तो अब हर कंट्री को, काफी कंट्रीज को ये डर लगने लग गया कि कल को अगर हमारा पंगा हो गया यूएस के साथ में या यूरोप के साथ में, तो हमारा जो भी पैसा डॉलर में या यूरो में रखा हुआ है तो वो सीज हो सकता है. तो हमें पूरा पैसा डॉलर या यूरो में नहीं रख के डाइवर्सिफाई करना है. दिस इज फ्रॉम अ सेंट्रल बैंक पॉइंट ऑफ व्यू.
2: करेक्ट.
3: सो अब सेंट्रल बैंक बाई कर रहे हैं. जब आपके पास में डिमांड सप्लाई में एक तरफ डिमांड ज्यादा आने लग जाती है तो प्राइस ऊपर जाती है.
2: सही.
3: तो ये प्राइस मेरे ख्याल से तो और ऊपर जाती जाएगी.
1: Right, and this brings me to yet another question, Vinay, because given the current situation, you know, where it is the UAE dirham and the Indian rupee, now the rate is about 24.62. This is, the rupee is expected to even weaken further. Is that true mid-February? Because I was reading a couple of reports according to a few analysts.
3: So, mera personal view hai ki bhi ye gradual devaluation hota rahega, because end of the day, economy itni strong nahi hai. इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स यहाँ पे, और बांग्लादेश के इकोनॉमीज इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो डिवैल्यूएशन धीरे धीरे होता रहेगा. क्या रेट पे डिवैल्यूएशन होगा इज एनीबडीज गेस.
2: ऑफ कोर्स. लेकिन विनय, तो सवाल वही उठता है कि क्या और इंतजार करें या वक्त से फायदा उठाएं?
3: सो मेरा तो मानना यह है कि अगर आपके पास में कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है अपने देश में, एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, बिकॉज एंड ऑफ द डे क्वेश्चन ये है कि भी आप रिटर्न कितना कमा लोगे. अब यहाँ पे आपको 4% का रिटर्न मिल जाता है, और अगर आप अपने देश में, अगर आप लॉन्ग टर्म डिवेल्यूशन रेट अगर देखो, मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का बोल सकता हूँ, एवरेज अबाउट 4.5 से 5% डिवेल्यूशन है.
2: सही.
3: तो अगर मैं डॉलर दिरहम में 4% रख रहा हूँ और 4.5% का डिवेल्यूशन लॉन्ग टर्म का मानू, अगर मैं 8.5 से ज्यादा इंडिया में कमा सकता हूँ तो मुझे इंडिया भेजना चाहिए. अगर नहीं तो फिर आई शुड ट्राई एंड इन्वेस्ट सम मनी हियर.
1: विनय जी, इफ यू कैन टॉक टू अस अ लिटिल बिट अबाउट गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, रेमिटेंसेस के बारे में, यू नो दिस इज समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड, बट गोल्ड इन्वेस्टमेंट, वी हैव सीन द ग्राफ पॉप इन एंड पॉप डाउन, बट वी हैव नो आइडिया. ऑल्दो एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट इट इज टाउटेड टू गो एट एन ऑल टाइम हाई एट द एंड ऑफ 2026, बट इट्स ऑल्सो टाउटेड टू गो अ लिटिल बिट हायर दिस मंथ. इज इट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट?
3: I would say there is an upward trend in the gold in the last few years since 2022, और वो upward trend trajectory चलती रहेगी.
2: सही.
3: So question is of timing, what's the right time, and that's anybody's guess. But अगर आपको पता है कि भी gold की rate ऊपर जानी है, then any time is a good time to invest.
1: So would you suggest remitting money back home right now because of the current, you know, the exchange value? Or would you say hold on to that money and probably reinvest it over here? That is going to reap you much more benefits. How are you coining this situation?
3: देखो, अगर आप यहाँ पे रहते हो और आप अगर, for example, gold में invest करते हो अपने देश में, संभालने वाला कौन है? Precious है. आप घर में रखोगे, locker में रखोगे, जबकि आप यहाँ रह रहे हो. तो जहां आप रह रहे हो वहां पे आप ज्यादा अच्छे से संभाल सकते हो. तो माय एडवाइस वुड बी, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, और दूसरा चीज प्रॉब्ली एटलीस्ट आई कैन से फॉर इंडिया कि बाइंग गोल्ड इज मच इजियर ओवर हियर देन इन इंडिया. अगर एक एक्स अमाउंट से ज्यादा खरीदते हो तो वहां पे आपको अपने डिटेल्स, पैन कार्ड वगैरह देने पड़ते हैं, कल को सवाल आ सकता है, और यहाँ पे मच इजियर टू डू ऑल दैट.
2: एंड विनय, ये भी बताइएगा कि जाहिर है तो एक फिजिकल गोल्ड है, आपकी बुलियन, कॉइन्स, ज्वेलरी, जो भी आप कहिए, फिर दूसरे ऑप्शंस भी हैं, आप क्या प्रेफर करते हैं?
3: अगेन मेरा एग्जांपल थोड़ा गलत होगा बिकॉज माय वाइफ इज अ सीएफडी एक्सपर्ट, सीएफडी में कर लेती है. बट जनरली अगर आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन का कंफर्टेबिलिटी नहीं है तो फिजिकल गोल्ड लेना ज्यादा ठीक है.
1: ठीक है. और कुछ लोग ये भी कहते हैं, काफी एनालिस्ट ये कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड आप दुबई रियल एस्टेट जो है वो वहां पे आपका ध्यान जाना चाहिए बिकॉज दैट इज रेडी टू ऑफर यू 6-10% इन रेंटल ईल्ड. सो अगेन एज एन इंडिविजुअल आई एम फीलिंग टोन अपार्ट. शुड आई गो यू नो इन्वेस्टिंग इन टू दैट अमाउंट इन टू गोल्ड और शुड आई गो मे बी अ लिटिल बिट मोर एंड ऑल आउट इन टू द दुबई रेंटल मार्केट्स दैट इज रेडी टू सी दैट इंक्रीज फ्रॉम 6-10% rental yield, which is a lot more.
3: So, अगर आपके पास में प्रॉपर्टी खरीदने जितना पैसा है तो आप बेटर है आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, थोड़ा गोल्ड में डालें, एक बिगर चंक प्रॉपर्टी में डालें बिकॉज प्रॉपर्टी का हमेशा टिकट साइज बड़ा होता है. वैसे भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड इज अ डेड इन्वेस्टमेंट. वो इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं करता है, आपके पर्सनल वेल्थ के लिए शायद बढ़ जाए बट इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं करता है. जबकि रियल इस्टेट ऑल्सो ट्रिगर्स एन इकोनॉमिक मूवमेंट, लोगों को रहने के लिए घर मिलते हैं, आप रेंट आउट करेंगे. तो इट्स ऑलवेज गुड टू फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अमाउंट गोल्ड में डालें बट बिगर अमाउंट ऐसे एक्टिविटी में डालें जहां पे इकोनॉमिक मोमेंटम ज्यादा आए.
2: विनय, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है व्हेन इट कम्स टू गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स?
3: So gold mining stocks will also be doing good. गोल्ड जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी उनका कॉस्ट ऑफ माइनिंग तो सेम है, प्राइस ऊपर जाने के कारण उनकी कॉस्ट तो बढ़ती नहीं है. और बट प्रॉब्लम यह है कि भी गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स ऑलरेडी काफी हाई मल्टीपल्स पे चल रहे हैं.
2: ओके.
3: तो आइडेंटिफाई दैट अपॉर्चुनिटी तो आपकी रिलेटिवली रिस्क फैक्टर बढ़ जाती है वहां पे.
2: सही.
1: राइट. अब हम जब गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन रेट राइजिंग. इट इज अ टैक्स फ्री कैपिटल गेन, राइट? बट नॉट वेरी मेनी पीपल अंडरस्टैंड वाई द प्राइजेस यू नो सी सच ह्यूज फ्लक्चुएशंस. विनय जी, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू एक्सप्लेन दिस अ लिटिल मोर टू अस एज टू वाई द फ्लक्चुएशन हैपेंस एंड हाउ कैन वी मॉनिटर इट क्वाइट क्लोजली?
3: सो बेसिकली स्पेकुलेटिव ट्रेड ज्यादा हो रहा है. सो यू हैव ऑन वन साइड कंज्यूमर डिमांड जो मेनली साउथ एशिया में आता है और okay. और दूसरा चीज फिजिकल डिमांड आ रही है सेंट्रल बैंक से, मल्टीपल सेंट्रल बैंक्स. देयर इज आल्सो वन क्रिप्टो करेंसी गाय हु हैज बीन बाइंग बिग क्वांटिटी. इश्यूअर ऑफ क्रिप्टो करेंसी हैज बीन बाइंग बिग क्वांटिटी ऑफ गोल्ड. सो और ये दोनों के अलावा फिजिकल डिमांड, सेंट्रल बैंक डिमांड के अलावा स्पेकुलेटिव डिमांड है. नाउ आपके फ्रेंड सर्कल्स में सब जगह पे ये बात आ रही है गोल्ड ऊपर जा रहा है और गोल्ड और ऊपर जाएगा. सो एवरीबडी इज टेकिंग अ पोजीशन. सो आपका स्पेकुलेटिव पोजीशंस बहुत बढ़ रहे हैं और स्पेकुलेटिव पोजीशंस होते हैं तो बहुत लोग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं.
2: सही.
3: तो जैसे ही थोड़ा सा करेक्शन आता है तो एक मोमेंटम आ जाता है करेक्शन का और सडनली ड्रॉप हो जाता है. जैसे अभी आपने देखा पिछले एक वीक के अंदर
2: जी
3: बहुत गोल्ड की प्राइस गिर गई थी.
2: राइट.
3: बट इनहेरेंट डिमांड है मार्केट में है फिजिकल गोल्ड के लिए बिकॉज सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग बिग क्वांटिटी.
2: ऑलराइट.
3: तो डिमांड तो प्राइस लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा. शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करना is very difficult for anybody.
2: Now, Vinay ji, agar thoda sa hum, you know, sidetrack ho jayen for those people who are not at this point in time able to invest in gold, to unke liye dusri precious metal agar aap thoda sa recommend karein ya guide karein us side par.
3: So, aap refer kar rahe hain silver ko, shayad. Aur silver ke andar aapka sudden demand increase nahi hua hai. आफ्टर द इवेंट बहुत लोग एनालिसिस कर लेते इसके कारण गया होगा, उसके कारण गया होगा. बट अगर आप देखें फंडामेंटली सिल्वर का यूसेज होता है बैटरीज के अंदर और सोलार पैनल्स के अंदर और काफी इंडस्ट्रियल यूसेज है. बट कोई सिग्निफिकेंट जंप नहीं हुआ है सिल्वर के अंदर. सो मेरे जस्ट माय व्यू सिल्वर का इंक्रीज वॉज स्पेक्यूलेटिव. अब आप सोचें भी अगर आप एक किलो सिल्वर खरीदें तो आपको ठीक है आप घर में रख सकते हो लेकिन अगर आप एक टन खरीद रहे हो तो आपको उसको स्टोरेज करना है, सिक्योरिटी इनकर करनी है, इंश्योरेंस इनकर करना है वर्सेस गोल्ड, तो आपका जो आउटले होता है वो सिग्निफिकेंटली हायर होता है गोल्ड में.
1: जी.
3: तो व्हाई वुड एनीबडी बी बाइंग सिल्वर एंड होल्डिंग सिल्वर? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट लॉजिक.
1: ओके.
3: आपकी स्टोरेज कॉस्ट काफी हाई हो जाती है. सो सिल्वर वॉज प्राइमरीली स्पेकुलेटिव, तो उसमें करेक्शन आना ही था.
1: All right, Vinay ji, can you help us also understand the global and local equities? Now, for a long-term growth, experts are recommending allocating approximately, say, 80% of a beginner portfolio to your low-cost global index funds or your ETFs. Now, for local exposure, I'm sure there are a couple of platforms that provide complete access to top companies listed on ADX and DFM. Can you help us or probably take us through that process? If I want to get into the stock market, or if I want to start investing, where do I start from and how do I do it? What is the bare minimum amount I require?
3: So bare minimum amount, you can start with the smallest 2,000 or 5,000 dirham, even 1,000 dirhams. Aapko DFM ya ADX mein register karna hai ki investor ID lena hai, aur aapko identify karna hai ki kaun sa broker hai jo uske charges kya hai, and there are multiple brokers in the marketplace. तो और बस उसके साथ अकाउंट खोले, पैसा डिपॉजिट करे और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे देते हैं वो लोग. सो इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आपको सबसे पहले तो आप ब्रोकर के पास जाएंगे, इवैल्यूएट करेंगे, वही आपके लिए सब कुछ प्रोसेस कर देगा.
1: Now,
3: और प्रॉब्ली दो तीन दिन के अंदर पूरा प्रोसेस.
1: बट हाउ डू यू डाइवर्सिफाई योर इनकम? इज देयर अ ग्रोथ चार्ट दैट यू हैव टू मॉनिटर? डू यू प्ले इन और डू यू गो इन फॉर अ लॉन्ग टर्म गेन, और डू यू काइंड ऑफ पुट योर मनी, सी इट इंक्रीज एंड देन पुल इट आउट? हाउ डज दैट वर्क? हाउ शुड यू यू नो बी एज एन इन्वेस्टर और एज एज समबडी हु इज इन्वेस्टिंग इन टू स्टॉक्स?
3: देयर आर टू थ्री डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज. एक तो डे ट्रेडर होते हैं जो मोमेंटम ट्रेडर होते हैं. अच्छा, ये प्राइस बढ़ रहा है, पिछले आधे घंटे में बढ़ गया, मैं अब खरीदूंगा और आज के आज ही फिर से बेच दूंगा. दैट्स मोर स्पेक्युलेटिव. उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 100 सुनार की एक लोहार की. आपने थोड़ा थोड़ा पैसा कमाया और सडनली एक मूवमेंट ऐसा आ गया कि आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है.
2: सो कैलकुलेटिव रिस्क. विनय हमारे साथ, विनोद कुमार भास्कर हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप डायमंड इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या विचार हैं, क्या राय है आपकी?
3: सो जब से ये मैनमेड डायमंड आया है, सप्लाई की अबंडेंस हो गई है.
2: okay.
3: अब कोई भी पर्सन अगर एक डायमंड ज्वेलरी पहन रहा है तो सामने वाला ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि ये नेचुरल है या मैनमेड है.
2: सही.
3: तो अब आप खाली ये गेस करोगे उसकी हैसियत के हिसाब से कि ये नेचुरल है या मैनमेड है. बट आप गेस नहीं कर सकते हो कि भी वो नेचुरल है या मैनमेड है. सो मेरा पर्सनल व्यू है कि भी जो सप्लाई कॉन्स्टेंट थी डायमंड में वो हट गई है, तो डिमांड सप्लाई में जब सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस पे असर पड़ता ही. और जैसे जैसे डिमांड, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जा रही है, डायमंड की प्राइस और कम होती जाएगी.
1: Agreed.
2: Now, विनय ये भी बताइए कि क्या आपने अपने आस पास ऑब्जर्व किया है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग नाउ? बिकॉज जेन जी वेरी डिफरेंट माइंड सेट, वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस, कमिंग फ्रॉम ए वेरी डिफरेंट स्कूल ऑफ इन्वेस्टर्स. वट हैव यू ऑब्जर्व्ड एंड आर दे नाउ यू नो रियलाइजिंग दैट गोल्ड इज अ गुड ऑप्शन, कीपिंग करंट सिचुएशंस इन माइंड?
3: Generally, I'm very impressed with the Gen Z mindset. They are all far more informed than what we were at our time, because information is far more easily available.
2: Well said.
3: They are far more financially aware and financial savvy on the products. आप जो stock market rally देख रहे हैं, particularly US में, a big chunk is basically the Gen Z investors who are in the workforce now and actually are aggressively investing into the share market as well.
2: Sahi.
3: So generally, they are doing quite well from a financial awareness and an investment point of view.
2: Mm-hmm.
3: The only concern is that unhone abhi tak life mein kabhi downturn dekha nahi hai, aur downturn on and off aata rehta hai, so there will be at some point.
1: I'd like some praising for the millennials as well.
2: हम तो कुछ ज्यादा ही कैलकुलेटिव रिस्क लेने के आपके
1: But is it a good thing or is it not a good thing? Because when you're investing, I've been told that you need to take, you know, risks to appetite is a different story. And what Absolutely. Ideally should be a percentage when you're talking about risk to appetite?
3: So there is no standard formula over here. But मेरा मानना ये है कि भी चादर दे के पैर फैलाओ
2: दैट बैलेंस
3: वो एक्सेसिव
2: यस वो है ही नहीं चादर ही नहीं है रुमाल ले लीजिए
3: रुमाल दे के पैर फैलाओ
2: विनय चौधरी व्हाट अ प्लेजर टू ऑलवेज हैव यू ऑन एयर एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स भी इसी तरह एंजॉय करते हैं जिस तरह हम आपसे बात करते हैं एंड सो मच लर्न
0: द बेस्ट ऑफ डे ब्रेक ऑन टॉक 100.3

0: is where every journey becomes a story worth telling. A story that begins with Fly Dubai.
1: All the action, ball by ball. This is Talk 100.3.
2: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. No really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है.

0: जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम।
0: बाजू